90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुप्रभात, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ादी का प्रसारण है। आज मंगलवार है, 1443 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार सन 2026। प्रातः के 7:01 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की सभा का शुभारंभ करते हैं।

90.8 मेगा हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद से। आइए श्रोताओं, अब आपको हम बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। सुबह 7:10 पर समय होगा अक्षय निधि कार्यक्रम का, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे प्रथम मंडल से सूक्त 138।

कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए सुबह 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग, जिसका समय होता है सुबह 8:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर।

0: 8:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार, जिसमें आप सुनेंगे प्रकृति की गोद में। सुबह 9 बजे हम सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा। आज एपिसोड 7 का प्रसारण किया जाएगा। 9:30 पर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जो आज केंद्रित रहेगा अब्बास तैयब की पुण्यतिथि पर। दिन में 10 बजे का समय होगा रेडियो रिपोर्ट का, जिसमें आज आप सुनेंगे भावानुभाव और महुआ महोत्सव। साथ ही साथ भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी कार्यक्रम परिक्रमा में। 10:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम आजाद हिंद। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा हरि किशन तलवार की शहादत पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज विषय रहेगा आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। आयुर्वेद डॉक्टर शैलेश मानक जी से खास बातचीत आप सुनेंगे पूर्वाखले की। 11:30 पर होगा कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, आज इसका 67वां भाग प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आप बने रहिए 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवन जहर क्या है? भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वो जहर होती है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच, अभिमान, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक हर चीज जहर है। और मजेदार बात यह है कि मनुष्य दिन रात कुछ न कुछ मांग रहा है। जो उसके पास उपलब्ध है उसे भी मांग रहा है, और जो उसके पास नहीं है उसे भी मांग रहा है। इच्छाओं की अनंत श्रृंखला से जकड़ा हुआ है मनुष्य। आवश्यकता से अधिक की ही चाहत हर मनुष्य की है। चिंतन इस बात पर करें कि जब हर मनुष्य जहर ही मांग रहा है, जहर ही एकत्रित कर रहा है, तो फिर आनंद कहां से उपजे?
2: जीवन सौरभ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 138वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं पूषा और छंद है अत्यष्टि।
5: प्रप्र पूष्णस्तु विजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते अर्चामि सुम्नयन्न हमन्त्युतिं मयो भुवं विश्वस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः। शक्ति के साथ उत्पन्न होने से पूषा देव की महिमा का सभी जगह गान होता है। इनकी सामर्थ्य को दबाना संभव नहीं तथा इनके प्रति स्तुति गानों की कभी कमी नहीं रहती, जो देव यज्ञकर्ताओं के मनों में पारस्परिक सहयोग भावना जगाते हैं तथा जो तेजस्विता युक्त यज्ञों को संपन्न करते हैं, ऐसे संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त सुख प्रदायक पूषा देव से अभीष्ट सुखों की प्राप्ति के लिए हम अर्चना करते हैं। प्रहित्वा पूषनंजिरम न यामनि स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा मृध उष्ट्रो न पीपरो मृधः हुवे यत्वा मयो भुवं देवं सख्ययाय मर्त्यः अस्माकमांगूषान् द्युम्नि नस्कृधि वाजेषु द्युम्नि नस्कृधि। हे पूषादेव, जिस प्रकार मनुष्य तीव्र गतिशील अश्व को प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित करते हैं अथवा जिस प्रकार संग्राम की ओर प्रयाण करने वाले वीर को प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार हम स्तोत्र वाणियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप मरुस्थल से ऊंट द्वारा यात्रियों को पार उतारने के समान ही हिंसक शत्रुओं से हमें सुरक्षित करें। आप हमारी वाणी में प्रखरता लाएं, सभी संघर्षों में हमें तेजस्विता युक्त करें। मैत्री भावना के लिए सुखकारी आप पूषा देव को ही हम सभी मनुष्य आवाहित करते हैं। यस्य ते पूषन्त सख्ये विपन्यवः कृत्वा चित् संतो वसा बुभुज्रिर इति कृत्वा बुभुज्रिरे तामनु त्वा नवीयसीम नियुतम राय इमहे अवेडमान उरुशंस सरी भव वाजे वाजे सरी भव। हे पूषा देव, आपकी मैत्री भावना के ज्ञाता वीर पुरुष अपनी पुरुषार्थ क्षमता एवं आपके संरक्षण से सभी उपभोग्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सभी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही उपभोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए किसी की दया के पात्र नहीं बनते। उस श्रेष्ठ बुद्धि के अनुशासन के अधीन रहकर आपसे हम धन की कामना करते हैं। हे बहुसंख्यकों से स्तुत्य पूषा देव, आप प्रत्येक संघर्षशील संग्राम में हमारा सहयोग करें। अस्या उषूण उप सातये भुवो हेडमानो रैवाम अजाश्व श्रवस्त तामजाश्व ओषुत्वा ववृति महि स्तोमेभिर् दस्म साधुभिः नहित्वा पूषन्न तिमन्य आघ्रणे नते सख्य मपहनुवे। हे पूषा देव, आप हमें वैभव संपन्न बनाने के लिए प्रेम भाव से दान दाता बनकर यहाँ पधारे। हे दर्शन योग्य पूषा देव, अन्न के इच्छुक आप हमारे पास आएं, हम श्रेष्ठ स्तवनों द्वारा आपकी स्तुति करें।

जब जीव अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, अपने भय और अपनी इच्छाओं को छोड़कर पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे प्रभु की शरण स्वतः मिल जाती है।

सभी शरण नश्वर और सीमित हैं। वे हमें कुछ समय के लिए सुख, सुरक्षा या सुविधा तो दे सकती हैं, परंतु स्थायी शांति, सच्चा आनंद और मुक्ति केवल प्रभु की शरण में ही मिल सकती है।

की हर शरण टूट सकती है, साथ छूट सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु प्रभु की शरण कभी नहीं टूटती। यही अंतिम सहारा है, यही जन्म जन्म का साथी है और यही सच्चा सुख देने वाला है।

उनका नमस्कार। सन 1895 में जब लोकमान्य तिलक का नारा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है देश में चारों ओर गूंज रहा था, उस काल में छोटा नागपुर बिहार के वनवासी क्षेत्र के एक युवक ने तीर की नोक पर स्वराज्य की घोषणा कर दी। इस विद्रोही तूफान का नाम था बिरसा मुंडा। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची से 45 किलोमीटर दूर उलिहातू नामक गांव में किसान सुगना मुंडा के घर 15 नवंबर 1870 को एक पुत्र का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार का दिन था, अतः परंपरा के अनुसार इस बालक का नाम बिरसा पड़ा। सुगना मुंडा को अपने बेटे बिरसा मुंडा से बहुत प्यार था। वो उसे पढ़ा लिखा कर एक योग्य व्यक्ति बनाना चाहते थे। जब वो 16 वर्ष का हुआ तो उसे चाईबासा के JEL मिडिल स्कूल में पढ़ने को भेज दिया गया। बांसुरी और तुमड़ी बजाने का बिरसा को बेहद शौक था। जंगल में एकांत में बैठकर बिरसा बांसुरी की तरंग छेड़ते तो वन्य जीवों के कान खड़े हो जाते और वनस्पतियां लहराने लगती। बांसुरी बजाने के बाद वो लोग गीत गाते और फिर एकाएक गंभीर हो जाते। 4 साल तक उसने वहां किसी तरह दिन गुजारे और एक दिन जब स्कूल में अपने सहपाठियों को कंधों पर हल रखकर खेती करते देखा तो उसका किशोर मन विद्रोही हो उठा। वो दौड़कर सहपाठियों के समीप पहुंचा। उसने उनके कंधों पर उंगलियों से छूकर देखा तो फफोले पड़े हुए थे। बिरसा की आत्मा धधक उठी और वो बेकाबू हो गया। वे सोचते कि क्यों न इस अत्याचार और शोषण का विरोध करते हुए मरा जाए। यदि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, संघर्ष करें तो कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन निश्चित ही कोई ऐसा विकल्प निकलेगा जिससे हम इंसानों की तरह जी सकेंगे और प्रकृति के उन सभी उपहारों का भोग कर सकेंगे जो सारे मनुष्यों को ईश्वर ने समान रूप से दिए हैं। 16 वर्ष की आयु में बिरसा ने अपनी जाति का उद्धार करने का संकल्प लिया और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। 1894 में सारे देश में भीषण अकाल पड़ा। मुट्ठी भर अनाज को मोहताज छोटा नागपुर के रहवासी बेर और जामुन के पेड़ों की छाल उबाल कर पीने लगे। दूसरी ओर अंग्रेज सिपाही यथासमय मालगुजारी वसूल करने आ जाते और न मिलने पर अत्याचार करते। घर में घुस घुस कर औरतों के गहने छीनते और गहने न मिलने पर महिलाओं के साथ अनाचार करते। बिरसा ने ये सब देखा तो भारतीय युवाओं को ललकारा और कुल्हाड़ी के एक वार से हेड कांस्टेबल का सिर धड़ से अलग कर दिया। कांस्टेबल ने गोली चलानी चाही तो तीर के विष ने उसका काम भी तमाम कर दिया। बाकी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग गए। छोटा नागपुर के इतिहास में गोरे आतंक के हिंसक विरोध की ये अभूतपूर्व घटना थी। जहां ये घटना हुई वो क्षेत्र रांची मुख्यालय के अंतर्गत आता था। उस समय रांची के डिप्टी कमिश्नर HC स्ट्रीट फील्ड थे। उन्होंने बिरसा मुंडा पर वारंट जारी कर दिया। 26 अगस्त 1895 को बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने पर उसकी देश प्रेम की भावना और बलवती हुई।

बरगांव में आनंद पांडे नाम के एक स्वामी अपने विचारों के कारण लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। बिरसा ने आनंद पांडे को अपना गुरु बना लिया। आनंद पांडे उन्हें रामायण और महाभारत के नायकों की कहानियां सुनाते। इससे बिरसा राम, लक्ष्मण, भीम, अर्जुन और कृष्ण की तरह बलवान और सत्य के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति बनने के स्वप्न देखने लगे। जिन दिनों बिरसा जीवन के रहस्य को समझने, धर्म की बारीकियों में उतरने, ईश्वर की शक्तियों को समझने और आदिवासियों और गरीबों को अंदर से मजबूत बनाने के उपाय खोजने लगे थे, उन्हीं दिनों आदिवासी क्षेत्रों में सरकार के स्वामित्व वाली गांव की बंजर भूमि को सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया। इस नीति में वनवासियों का जंगल से जरूरत के लिए लकड़ी काटना और पशु चराने के अधिकार को छीन लिया गया। बिरसा ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी स्थिति में वे अपने गुरु आनंद पांडे की आज्ञा लेकर गांव के लिए रवाना हो गए और वहां पर एक सेवा दल की स्थापना की। देखते देखते 4-5 हजार आदिवासी सेवा दल में शामिल हो गए। बिरसा ने चलकद में स्वराज का उद्घोष किया और सिंह गर्जना की कि अब वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेज हमारे चरणों पर गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। इसी के साथ बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। उसने वनवासियों से फसल न बोने को कहा। 11 अगस्त 1897 के दिन बिरसा मुंडा 400 आदिवासियों को साथ लेकर खूंटी पहुंचा। धधकते ज्वालामुखी से निकले लावे की तरह तीरों की वर्षा ने न जाने कितने सिपाहियों को ढेर कर दिया। रांची के डिप्टी कमिश्नर सर ए फोरबेस को आदेश दिया गया कि वे बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ें और इस क्रांति का नामो निशान मिटा दें। चकलत प्रवास के दौरान अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिनसे ये साबित होता है कि कम आयु में बिरसा में चमत्कारी शक्तियां पैदा होने लगी थीं। इसके चलते लोग उनका आदर करने लगे और उन्हें भगवान मानने लगे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान रोगियों की सेवा करने और महामारी पीड़ितों की मदद करने में लगा दिया। बिरसा लोगों से कहते कि प्रण लो कि प्रतिदिन स्नान करोगे, साफ सुथरे रहोगे, धुले हुए कपड़े पहनोगे और अंधविश्वास छोड़ दोगे। ईश्वर एक है, उसमें विश्वास करो। एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, एक दूसरे की सेवा करो। दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। बिरसा ने अज्ञान, अन्याय और दमन के विरुद्ध लड़ने वाले नायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लोग भारी संख्या में उनके उपदेश सुनने को आने लगे। बिरसा अपने उपदेश में वनवासियों से कहते थे कि बलि चढ़ाना बंद करो, मृतकों के साथ धन दौलत गाढ़ने की प्रथा त्यागो, भूत प्रेतों की पूजा बंद करो, तांत्रिकों को महत्व ना दो। उनकी वाणी में इतना असर हो गया कि वे जो कहते वही हो जाता।

इसी बीच सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बिरसा का भेज जाने वाले कुछ आदमी बदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह से मिल गए और 7 आदमियों ने सेतरा के पश्चिम छोर पर पहुंचकर सोते हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा को मुकदमों में फंसाकर आजीवन जेल में सड़ा देने की प्रशासन ने तैयारी की थी। बिरसा को जेल में यातनाएं देने का दौर जारी हो गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और कमर में भारी सीकड़ बांधकर बिरसा को इतना अधिक कष्ट दिया गया कि वे ना तो ठीक से बैठ सकते थे ना खड़े रह सकते थे। असहाय अत्याचारों के चलते बिरसा को खून की उल्टियां आईं और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु पर प्रतिक्रिया के आतंक से डरे जेलर ने तुरंत ही उनके पार्थिव शरीर को रांची के ही एक उपनगर कोंकर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जलवा दिया। उनकी मौत का समाचार कई दिनों बाद उनके परिवार को दिया गया। कुटिल अंग्रेजों ने खबर फैला दी कि हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। घटना के 75 साल बाद इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि बिरसा की मृत्यु आर्सेनिक विष देने से हुई थी। इस तरह भारत की आजादी का ये मतवाला वनवासी अंग्रेजों से लड़ता हुआ मात्र 30 साल की आयु में देश के लिए शहीद हो गया।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं वर्षा सिंह।
2: और मैं हूं दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
1: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
0: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
1: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
0: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
1: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
0: वर्षा, आप जानती हैं
1: जी
0: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परि और आवरण, यानी पर्यावरण हमारी धरती का।
1: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
0: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
1: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाएगी।
1: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
0: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
0: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
0: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
1: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है, और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
0: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
1: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार है। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
0: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
0: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता।

0: पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
1: हमारे पर्यावरण में जैविक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
0: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
1: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
0: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काटकर समाप्त किया जा रहा है।
0: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्होंने लिखा है वो अब देखने को नहीं मिलती है।
1: आपका इशारा किस ओर है दीपक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सतपुड़ा के घने जंगल।
0: शायद नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में इन प्राचीन जंगलों का कितना अच्छा वर्णन मिलता है। कितने घने होंगे ये जंगल जब उन्होंने इन्हें देखकर इस कविता की रचना की होगी।
1: हाँ, कविता की एक पंक्ति में उस रूप का ऐसा सुंदर विवरण है और ऐसा सुंदर चित्रण है कि जब उसे पढ़े तो हमें दिखाई भी देने लगता है।
0: लेकिन वर्षा जी, बड़े अफसोस की बात है, आज वृक्षों की कटाई और बड़ी इमारतों को बनाने और नए नए उद्योगों को शुरू करने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, घने वृक्षों को काटकर नष्ट करना, पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर हम मनुष्यों ने अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर लिया है।
0: कभी कभी लगता है वर्षा जी, प्रकृति से हमने बस लिया ही है, हमने कुछ भी नहीं दिया। अनगिनत वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलता धुआं, दूषित पानी और मशीनों की आवाजें, ये सबके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, इसी कारण हमें नित नई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका इलाज हमारे चिकित्सा जगत की समझ से बाहर है।
0: और इस कड़ी में हम वैश्विक स्तर पर फैली बीमारी COVID-19 की भयावहता को देख चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश से लाखों लोगों की जानें गईं।
1: इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें, उसमें परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस बात की आवश्यकता अब हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अब इस ओर पहल का कदम नहीं बढ़ाएं बल्कि दौड़ पड़ें।
0: बिल्कुल ठीक कहा वर्षा जी, क्योंकि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और मानव जाति और अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा।
1: हम सभी ने सदा से पर्यावरण के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। तकनीकी आपदा के कारण भी हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी महत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: हाँ, जबकि पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रकृति द्वारा दी गई उन अनमोल वस्तुओं के महत्व को समझे और इसे संरक्षित रखे, क्योंकि हमारे आसपास अपने जीवन को बचाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है।
1: तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति गंभीर थे और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति को माता के रूप में माना और ये भी जाना कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है।
0: ये बड़ी सुंदर बात कही आपने। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सफाई को महत्व दिया और ये माना कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और प्रदूषण जीवन के लिए खतरा।
1: जी हाँ, उन्होंने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग की बात पर बल दिया और पानी का सीमित उपयोग किया। उन्होंने सदा अपने शिष्यों को भी पर्यावरण के महत्व और संरक्षण की शिक्षा दी।
0: जी हाँ, अपनी शिक्षा में उन्होंने प्रकृति के साथ रहने और उसके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देवी देवता के रूप में देखा, उसकी पूजा की और कहा कि इसी में हमारा सुख, शांति और समृद्धि है।
1: जी हाँ, उनकी कही गई बातें और उनकी दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने उन पूर्वजों की शिक्षा को अपनाकर पर्यावरण को बचाना ही है।
0: बिल्कुल सही बात कही वर्षा। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि हम भूलते जा रहे हैं कि इन्हें पूरा करने के कारण हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी कितना कुछ सह रही है।
1: अब देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में ही कितना अंतर आ गया है। ज्यादातर घरों में देर से सोना और प्रातः काल की बेला गुजरने के बाद उठना और फिर अलसाते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करना,
0: जबकि प्रातः काल और सूर्यास्त से पहले का समय प्रकृति के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण समय में से होता है। इस समय सारा वातावरण साफ, शांत और ताजा होता है।
1: सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को मोह लेती हैं और कहते हैं ना, प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को और शरीर को तरोताजा कर देती है।
0: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है।
1: बिगड़ता पर्यावरण वर्तमान समय में विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर और व्यक्तिगत रूप से भी इसको बचाने में जुटें और सभी को प्रेरित करें।
0: प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्रकृति के महत्व को समझें। ये सभी जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए मानव जीवन के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण, जहां हम सब साथ रहते हैं और इस पर केवल हम मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव, जंतु और वनस्पति का अधिकार है, इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाए रखें।
1: ये प्रकृति का अनमोल उपहार कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे वायुमंडल या हवा, जलमंडल या पानी, स्थलमंडल या चट्टाने और मृदा यानी मिट्टी, जैवमंडल या जीव जंतु और सौर ऊर्जा।
0: इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। इन सभी पर हम अपने अगले कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा करेंगे।
1: तो दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आइए प्रण करें।
0: धरती डगमग डोलती आते नित भूकंप,
1: करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। अब वक्त है इजाजत लेने का।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी। मैं था आपके साथ दीपक निमा।
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भारतीय चिंतन परंपरा कहती रही है कि माटी का ये तन माटी में ही मिल जाएगा। वसंत की तरह यौवन के साथ ही पतझड़ की तरह उजाड़ भी इस शरीर का सच है। जो शरीर आज यौवन के गर्व से भरा है, वही कल समय के स्पर्श से बदल जाएगा। जो मुख आज सौंदर्य का दर्पण प्रतीत होता है, वो भी एक दिन काल के प्रवाह में अपनी चमक खो देगा। परिवर्तन ही इस देह का स्वभाव है और नश्वरता ही इसका अंतिम सत्य है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण

0: श्रीराम की दृष्टि में देह एक साधन है, साध्य नहीं है। देह एक आवरण है, आत्मा नहीं है। इसलिए वो बाहरी रूप के मोह से ऊपर उठकर उस शाश्वत सत्य की ओर देखने का आह्वान करते हैं जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। तो आइए सुनते हैं योग वासिष्ठ का ये गहन वैराग्यमय प्रसंग, जहां भगवान श्री राम की वाणी हमें देहाभिमान के बंधनों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है, जहां नश्वरता के चिंतन से निराशा नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रकाश जन्म लेता है। आज इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा पर। पिछले अंक में हमने तृष्णा की निंदा पर बातचीत की थी, अब शरीर पर हम बात करने जा रहे हैं। सच तो ये है कि शरीर के सुख की आकांक्षा सभी को होती है, सुख के भोग का माध्यम शरीर माना जाता है
1: जी।
0: लेकिन क्या वास्तव में शरीर भोगता है सुखों को? किससे भोग होता है?
1: आपने बहुत आनुभविक प्रश्न किया। हम ये कहेंगे कि हमारे श्रोता जितने भी हैं, जरा एक बार अपने अनुभव पर अपना दृष्टिपात करें तो आपको ये लगेगा कि सुख की आकांक्षा जीवन भर बनी रहती है
0: जी।
1: और आकांक्षा हमेशा उसी की होती है जो हमारे पास नहीं होता। ये भी आप माने कि जो चीज आपके पास है,
0: हाँ।
1: एक किसी गीत में ये बात कही भी गई है कि ये दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जो चीज खो जाता है वो हमारे लिए मूल्यवान है, या जो खोया हुआ है जिसको हम पा नहीं पाए अभी। सतत सुख के लिए प्रयासरत रहना इसका मतलब कि सुखी व्यक्ति नहीं है,
0: कुछ खोया हुआ है,
1: कुछ खोया हुआ, सुख खोया हुआ है
0: जी जी।
1: अब सुख खोया हुआ है लेकिन सुख के भ्रम में हम सभी जी रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, राम जी की दृष्टि इसमें कहते ना, राम जी की दृष्टि, कबीर साहब ने तो कहा कि राम जी घट घट में बसते हैं, घट घट व्यापे राम है ना, कहते हैं एक राम हर घट में लेटा। तो उस राम की दृष्टि देखिए कैसी है। वो राम कहते हैं कि महामुने, जो मैंने शरीरधारियों को देखा, गीली आंत जिसमें मल मूत्र की थैलियां हैं। आप देखिए, हमारे हम एक बहुत बड़े संत का जब सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संसार का पवित्र से पवित्र वस्तु भी शरीर के स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। जैसे भोजन तब तक जूठा नहीं है जब तक आपने उसे चखा नहीं। आपने जिह्वा को जैसे स्पर्श दिया वो मतलब अशुद्ध हो गया। तो ऐसे में चाहे कितना भी पवित्र वस्तु शरीर में डालो, पानी आपने गंगा जल ही आप पी लीजिए लेकिन वो मूत्र बन के ही तो निकलेगा।
0: बिल्कुल
1: है ना। कितना भी स्वादिष्ट कुछ खाइए वो मल बन के निकलेगा। तो वो कहते थे कि ये मल मूत्र बनाने की मशीन है और इससे प्रेम लोग करते हैं
0: जी जी,
1: है ना। तो एक प्रकार की देखें, ये कहेंगे कि एक प्रकार का शरीर को नकारना हुआ, नकारना नहीं है, ये शरीर के प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे ये शरीर ही हमें बहुत सारे दुखों में भी ले जाता है
0: जी जी।
1: हम दुखी भी क्यों हैं? शारीरिक चिंतन की वजह से, मस्तिष्क के क्रियाकलापों की वजह से, अपने पूर्व की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं की वजह से हैं
0: जी जी।
1: तो ऐसे में ये सब शारीरिक ही तो है, देखे तो चिंतन भी शरीर से ही होता है, है ना। तो राम जी कहते हैं, नाड़ियों से भरा हुआ है, नाना प्रकार के विकारों से युक्त और अंत में पतनशील है, जिसको आपने अभी कहा भी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये विवेकवान देखते हैं लेकिन जिनका विवेक नहीं है वो इस जन्म लेने वाले शरीर को अमर देखते हैं, अमर बनाने की कोशिश में है। मैंने तो कई बार सुना कि मतलब अमरता के लिए मतलब लोग सोचते हैं कि शरीर अमर हो जाएगा, जबकि ब्रह्मा जी ने अपनी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना भी होगा हिरण्यकश्यप की कथा, जब हिरण्यकश्यप तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है तो कहता है कि मुझे कोई मार ना सके। यही बार मांगा उसने। अब आप देखिए, ये हिरण्यकश्यप नहीं, हर वो व्यक्ति जो मरना

0: जो कारण हो रहे, न हम दिन में मरे, न रात में मरे, न
1: घर में मरे, न बाहर
0: मरे, न जमीन पर, न आसमान
1: जी।
0: तो भगवान, उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु, तो कहते हैं वो नरसिंहा अवतार,
1: बिल्कुल
0: कैसी मृत्यु हुई। तो मृत्यु नहीं टाली जा सकी, लेकिन कथा सुनने के बाद भी लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता और वो जीवन भर इसी शरीर की चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि जब तक आपके पास

0: शरीर मिला था, अगर आप सत्कर्मों की बात करते, उसके सदुपयोग की बात करते, तो शायद श्रेष्ठ होता। इसी शरीर से आपने कितने निकृष्ट कर्म किए हैं, किए जा रहे हैं, कैसा चिंतन हम कर रहे हैं, सच्चिंतन करें, सत्संग करें।
1: जी जी जी।
0: वो स्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा रामचरित मानस के कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन शरीर से आप असत का संग करने में लगे हैं, तृष्णा को पूरा करने में लगे हैं, जड़ पदार्थों को ही आप चेष्टा बनाए हुए हैं अपने शरीर का। राम जी कहते हैं कि इस शरीर से एक ही चीज भोगा जाता है, सिर्फ दुख, सुख नहीं भोगा जाता। अब संसार क्या करता है, संसार शरीर से सुख भोगता है। कितनी उल्टी दृष्टि,
1: तो शरीर को लेकर ये दृष्टि है श्री राम की।
0: नहीं, ये दृष्टि श्री राम की नहीं है। ये तो उन्होंने कहा कि शरीर से, तो उनका जीस्ट है, कह सकते हैं ये सारांश है कि इससे सिर्फ दुख भोगा जा सकता है। पहले तो आगाह करते हैं लोगों को कि भैया तुम जो ये समझ रहे हो कि शरीर से सुख भोगोगे, सुख नहीं देता शरीर। शरीर से सुख तभी तक है जब तक शरीर के संपर्क में नहीं आया। शरीर के संपर्क में आते ही वो दुख का भोग बन जाता है। और राम जी कहते हैं कि यह शरीर सिर्फ दुख भोगने के लिए ही है। आपने जब प्रश्न किया कि इसको कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी दशा जरा देख लो कि शरीर कैसा है तुम्हारा।
1: हाँ।
0: थोड़े से खान पान आदि से आनंदित हो उठता है
1: जी।
0: यही है कहानी।
1: हाँ, हाँ।
0: हर दिन हम टेस्ट बदलने के लिए कहां कहां जाते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: तो ये है कहानी। कहते हैं थोड़े से शीत और उष्ण से ये खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, सोचनीय और अधम कोई दूसरा है ही नहीं।
1: अच्छा जी।
0: और शास्त्रों में कहा था कि शीत उष्ण को सही है, और मनुष्य क्या करता है, थोड़े से ताप बढ़ने में, थोड़ी सी बेचैनी में वो परेशान होता है। तो परेशान किस लिए होता है, शरीर से तो होता है। अभी आजकल गर्मी खूब पड़ रही है
1: जी, जी, जी।
0: तो आदमी गर्मी कहता है बहुत गर्मी हो गई, थोड़ी सी ठंड बढ़ती है तो ठंड बहुत बढ़ गई, थोड़ी बरसात होने लगे बढ़ गई, तो उससे भी खिन्नता। तो शरीर अंततः आपको करता क्या है, खिन्न ही तो करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो शांत कहां हो रहे हैं आप शरीर से। तो राम जी शरीर को ऐसे देखते हैं, कहते हैं कि ये गुणहीन है, सोचने योग्य है और अधम है, और हम लोग इसको सर्वस्व मान के बैठे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शशिकांत जी, इसी ग्रंथ में मैंने देखा कि एक जगह शरीर को जीव और ईश्वर रूपी पक्षियों का घोंसला कहा गया
0: जी।
1: इसे थोड़ा सा समझाएं हमारे सुनने वालों के लिए।
0: बहुत सुंदर कहा आपने। इसको समझाने के लिए मैं फिर वेदांत का सहारा लूंगा, क्योंकि ये ग्रंथ जो है अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है। वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो वो ईश्वर हो जाता है।
1: अच्छा
0: ठीक है। और ब्रह्म जब अविद्या से युक्त होता है तो जीव हो जाता है।
1: अच्छा,
0: इसको जरा समझें। माया का मतलब ये है कि ये संसार जो आभासित हो रहा है, जैसे यहां पर शुरू में ही इस ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे आकाश में नीलिमा, पीलापन, गुलाबी होना, ये प्रतीत होता है नहीं,
1: है नहीं। हाँ।
0: ठीक है। जैसे आज विज्ञान इस बात पर पहुंच चुका है कि जो चीजें आपको ठोस दिखाई दे रही हैं उसमें 99.999% चीजें खाली हैं, ठोस नहीं है। अब ये विज्ञान सिद्ध कर रहा है, लेकिन आपको तो ठोस दिख रही है, आप तो मान रहे कि ये तो ठोस है। आसमान अंध काला है, लेकिन आपको पीला भी दिखता है, नीला भी दिखता है, लाल भी दिखता है। जैसे जैसे मतलब कहते हैं ना, जो इंद्रधनुष भी आकाश में आपको दिखाई देता, सतरंगी भी दिखता है
1: जी, जी।
0: तो जो दिखता है वो है नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो माया से ये सृष्टि जो हुई है, ये ईश्वर इसका नियंता है। इसीलिए ऋषियों ने वेद में देवताओं की पूजा की है, अग्नि की पूजा की है, वायु की पूजा की है, प्रकृति की पूजा की है, क्योंकि प्रकृति में वो शक्ति है। अगर आप देखें सूर्य न हो, आज जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इस जगत में जो ऊर्जा दिखाई दे रही है विभिन्न जीवों में, वो किसकी है, सूरज की है।
1: सूरज की।
0: सिर्फ सूरज ना हो तो आप वनस्पतियों की कल्पना नहीं कर सकते, वनस्पतियां ना हो तो ऑक्सीजन की कल्पना नहीं कर सकते, कोई जीव होगा ही नहीं, जीवन की ही कल्पना नहीं हो सकती। तो ऐसे में आदित्य की पूजा, सभ्यता की पूजा
1: जी
0: होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो देवता है जिसमें शक्ति है, तो जब ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त होता है तो वो ईश्वर बन जाता है,
1: ईश्वर हो जाता है।
0: और जब ब्रह्म अविद्या के आवरण से ढक जाता है, अविद्या के विच्छेद से, मतलब वो नहीं देख पाता सत्य को, तो जीव बन जाता है, जिसको आचार्य शंकर कहते हैं कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, है ना। तो यहां पर जो कहा कि ये शरीर रूपी, यानी मानव का जो शरीर है, इसी शरीर पर जीव और ईश्वर रूपी पक्षी घोंसला बना के रहते हैं। इस जगत में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जीव और ईश्वर को जानता है, अन्यथा किसी भी जीव को ईश्वर और जीव की और ब्रह्म की कल्पना भी नहीं है,
1: नहीं।
0: वो अपना जीवन सिर्फ जीते हैं।
1: जी जी जी,
0: मनुष्य ही है। हाँ। क्योंकि मनुष्य के लिए ये शास्त्र है, इसलिए भगवान मनुष्य के अवतार में आए हैं, है ना, और आए हैं तो उनको योग वासिष्ठ की शिक्षा दी जा रही है, जबकि उनके अवतारों में मत्स्या अवतार भी है, वाराह अवतार भी है, वहां योग वासिष्ठ नहीं पढ़ाया गया है, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये मनुष्य के लिए है।
1: जी जी जी,
0: इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप भी शास्त्र का अध्ययन करती हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात का कि जीव और ईश्वर रूपी जो पक्षी है इस मनुष्य के शरीर पर ही ये घोंसला बना के रहते हैं, और इन्हें हमें समझना होगा। और जैसे ही इन्हें जीव और ईश्वर को आप समझेंगे, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को भी जान लेंगे और ब्रह्मानंद से भर जाएंगे और जीवन मुक्त की तरह व्यवहार भी करने लगेंगे, जिसके लिए ये योग वासिष्ठ राम जी को सुनाया जा रहा है।
1: अच्छा, शुभ और अशुभ की चर्चा बहुत होती है, किसके फल हैं ये?
0: शुभ और अशुभ जो फल हैं वो शरीर के फल हैं। ये शरीर से जो कर्म होता है उसी कर्म का परिणाम बनता, उसी कर्म का तो फल बनता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा संगोश्च कर्मणि। जो भगवान कह रहे हैं ये उसका उत्तर आपने इस प्रश्न को पूछ करके मतलब देने के लिए प्रेरित किया। वो कहते हैं कि जो भी फल है शुभ और अशुभ कर्म का फल है, तो कर्म शरीर से होगा, शरीर कर्म के बिना होगा नहीं। तो जो आपने कहा कि फल भी जो होगा वो आप जब फल प्राप्त हो तो फल पर विचार मत करो, कर्म पर विचार करो, ये भगवान कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार में था। और हम लोग क्या करते हैं, फल पर विचार करते हैं, कर्म पर विचार नहीं करते। इसी को कई लोग संत कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कर्म आपने अगर अशुभ किए हैं तो फल कैसे आपको आनंददायक मिलेगा, और कर्म आपने अगर श्रेष्ठ किए हैं तो उसका फल दुखद नहीं हो सकता। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो हमेशा आनंद में होता है, क्योंकि वो सजग वही है, वो बीज के वक्त सजग है, जानता है मैंने आम बोया है तो इसमें कांटे नहीं आने वाले, इसमें फल ही आएगा। और जो अन्य लोग हैं वो कर्म पर सावधान नहीं होते, इसलिए परिणाम से हमेशा दुखी रहते हैं।
1: जी अच्छा, अहंकार जो है
0: जी
1: हर मनुष्य के भीतर होता है, ये बात होती है, तो इसके रहने का स्थान कहाँ है?
0: भगवान राम कह रहे हैं कि सुख दुख रूपी फल जो है इस शरीर के द्वारा मिलते हैं, और उस सुख दुख रूपी फल का जो भोगता है वो अहंकार है। आप कहते भी ना कि मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, तो जब आप उस फल के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हैं
1: जी, जी,
0: तो वो अहंकार जोड़ता है। तो भगवान राम कहते हैं महर्षि से, कहते हैं कि हे मुने, इस शरीर ये जो है ये अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल गृह है। अब देखिए, जो हम लोग कहते हैं गृहस्थ कौन है, जो गृह में रहता है, है ना, तो जो ये गृह जो शरीर है इसका गृहस्थ कौन है? अहंकार। इसमें अहंकार रहता है, और भोगता क्या है, वो सुख दुख भोगता है। तो कहते हैं कि इस शरीर का फल सुख दुख है, और इसका जो गृहस्थ है वो अहंकार है। तो अहंकार अगर न हो तो सुख दुख भी ना हो। आप कभी भी कोई सुख या कोई दुख बिना अहंकार के आप उसके भोगता नहीं हो सकते,
1: नहीं हो सकते, बिल्कुल।
0: आप कभी विचार करके देखिएगा, जिससे आपने सम्मान की अपेक्षा नहीं की वो आपको अपमानित भी नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
0: जिससे आपने सुख की कामना नहीं की वो आपके दुख का कारण कभी नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल।
0: दुख का कारण तभी कोई बनेगा जब आपके सुख की कामना हो, है ना। तो ये देखें, ये शरीर पर दो ही फल लगते हैं, सुख और दुख के, और उसका भोगता जो है इस गृह में रहने वाला गृहस्थ अहंकार है।
1: अहंकार है, बहुत ही सुंदर। जी जी जी। अच्छा, शरीर को सुदृढ़ कौन करता है फिर?
0: देखिए, शरीर को सुदृढ़ जो करता है वो चित्त करता है, जिस चित्त में असंख्य वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा कि इस चित्त में असंख्य संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, और उन्हीं वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। वो ये नहीं कहते कि योग किसी वृत्ति का निर्माण है। आप मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे आर्ष ग्रंथों को, शास्त्रों को लोग इतने सतही स्तर पर समझने समझाने लगे हैं।
1: जी, जी,
0: ये पीड़ा देता है। अब वो जब उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो लोगों ने इस परिभाषा की एक वृत्ति बना ली, और वो सोचते हैं कि ये योग है, और इसको बताते फिरते हैं, रट लिया उन्होंने योगस चित्त वृत्ति निरोध। जो आपने ये सवाल किया कि इसको सुदृढ़ कौन करता है, ये चित्त करता है, और चित्त की वृत्तियां करती हैं, क्योंकि चित्त में चेतना का प्रकाश प्रकट न हो उसका कारण कौन है? वृत्तियां। ठीक है, तो ये वृत्तियां, अब राम जी को ये दिख रहा है, राम जी योगी हैं, वो कह रहे हैं कि चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा इसको सुदृढ़ कर रखा है शरीर को। और चित्त को उन्होंने नाम क्या दिया, भृत्य नाम,
1: भृत्य नाम दिया।
0: और हम लोग चित्त को स्वामी बना के बैठे हैं, चित्त हमारा स्वामी है, जैसी वृत्ति लाता है वैसा हम कर बैठते हैं, वैसा ही विचार करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा भी जो तुम विचार करते हो वो तुम हो जाते हो। तो हमारे चित्त में जैसी वृत्ति उत्पन्न हो गई वैसा विचार करने लगे, उसी विचार के हिसाब से हमारी भावनाएं भी डेवलप हो गई और हम उसी को पूरा करने में सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे में वृत्ति को जब स्वामी बना लेंगे आप तो क्या होगा,
1: यही होगा।
0: तो ऐसे में कहते हैं कि जो विवेकवान है, जिसको विवेक से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, वो चित्त को देख रहा है कि ये चित्त स्वामी नहीं है, इसका स्वामी कोई और है,
1: और
0: इस गृह में रहने वाला जो गृहस्थ है वो भी अहंकार बन के बैठा है। जबकि सच ये देखें तो इन सबको जो ऊर्जा मिल रही है उस चेतना से मिल रही है, उस परम तत्व से, जिसको आपने कहा ईश्वर और जीव रूपी जो घोसला है, तो ईश्वर में भी ब्रह्म है, जीव में भी ब्रह्म है, और माया और अविद्या के बिना ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। तो ऐसे में इस शरीर से एक ही चीज को उद्घाटित करने की जरूरत है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाही न जेहि परलोक संवारा। वो कितना दुर्भाग्यशाली है कि जिसने इसको पाने के बाद, जो मोक्ष का द्वार है उसको पाने के बाद भी वो बंधन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दे। अवलो नसानी अबना नसही हो, क्या लिखते हैं, नाश में ही नाश कर रहे हैं हम इस शरीर का, है ना। देखें तो ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, जो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये तन पाने के क्या ये अवसर एक पशु को मिल सकता है, अभी जो हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, क्या ये किसी और जीव पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, मनुष्य के लिए है। तो उसके बाद भी मनुष्य अगर अशांत है और इतने तत्व चिंतन से भरे हमारे शास्त्र हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है, ये भाग्य नहीं है मनुष्यतन का।
1: तो भगवान श्री राम शरीर को उस स्थिति में देख रहे हैं जिस स्थिति में देखा जाना चाहिए।
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर शरीर मनोरम क्यों प्रतीत होता है।
0: आपने बहुत सुंदर सवाल किया, मुझे लगता है कि आप ठीक से पढ़ती होंगी इसे। राम जी ने शरीर को देखिए, शरीर के द्वारा जो हम विषयों का भोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मोह के कारण कर रहे हैं, तृष्णा के कारण कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि इस शरीर में मनोरम की प्रतीति, यानी मन को हर लेने की प्रतीति। अच्छा, एक बात कभी आप विचार करके देखिए, मन का हरण कहाँ होता है, विषयों से कभी मन का हरण नहीं होता। विषय तो मन में यज्ञ की अग्नि की भांति आग प्रज्वलित करते हैं। विषय का भोग हमेशा विषय के भोग के प्रति आपको प्रेरित करता है। मनोरम इस शरीर में एक ही स्थान है, वो है निद्रा।
1: अच्छा,
0: हाँ, राम जी की दृष्टि देखिए, जबकि निद्रा में आपको शरीर का भी ज्ञान नहीं होता,
1: नहीं होता।
0: किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने का ज्ञान निद्रा में नहीं हो सकता, या मनुष्य होने के ज्ञान के साथ नींद नहीं आ सकती कभी किसी दिन।
1: और अभी हम लोगों ने पिछले अंकों में बात भी की है कि निद्रा यानी एक अस्थायी मृत्यु।
0: हाँ, तो राम जी की दृष्टि देखिए, कहते हैं एक ही मनोरम स्थान है शरीर में, वो है निद्रा।
1: अच्छा,
0: और मांडुक्य उपनिषद में निद्रा को प्राज्ञावस्था कहा गया।
1: प्राज्ञावस्था
0: कि आप देखें तो उस समय आप ये जड़ पदार्थों के ज्ञान से मुक्त होते हैं। निद्रा आप रोज शयन करते हैं, स्वप्न भी आता है सोने में,
1: जी,
0: लेकिन स्वप्न से इतर जो गाढ़ी नींद होती है, क्या विज्ञान आज तक कोई जान पाया कि गाढ़ी नींद में हम क्या होते हैं?
1: बिल्कुल भी
0: कुछ भी नहीं होता। हम जिन जिन चीजों की संसार में चिंता करते हैं, जिस शरीर की चिंता करते हैं, वो शरीर भी तो छूट जाती है नींद में। अब देखिए, जागते वक्त शरीर का छूटना, सपने में शरीर का छूटना डर देता है, लेकिन नींद में जाने के लिए आप कभी नहीं डरते, जबकि उस समय भी शरीर छूट रही होती है।
1: जी,
0: है ना। आप कहते हैं कि अरे भाई अब बहुत हो गया, आप सोने दो। मतलब एक तरह से मैं कहूं, अगर थोड़ा सा इक्वेशन बदल दूं, तो अब शरीर छोड़ने का समय आ गया, था शरीर छोड़ने दो। अगर ये बात निद्रा की जगह ये बात भी कही जाए तो निद्रा के लिए उपयुक्त होगी।
1: जी जी जी,
0: कि शरीर छोड़ना है अब, और यहाँ संसार में कह दिया जाए कि शरीर छोड़ना है, तो जितने आपके प्रियजन है रोने रहेंगे कि क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं आप। तो निद्रा परम वैराग्य है, परम शांति है, शरीर ही छूट जाता है सही देखें अपन। लेकिन तार्किक लोग ये भी कहते हैं कि इसके बाद हम जागते तो भी हैं। अरे भाई, जागते आप हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जागने को जागते वक्त छोड़ने की बात कोई करे तो आप लड़ मर जाएंगे। भाई, जागते वक्त जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, कोई मांगने अगर आ जाए तो दे दोगे क्या? और नींद में तो आप अपने घर को छोड़ देते हो, बिस्तर छोड़ देते हो, है ना, कुछ पता ही नहीं होता नींद में कहां सो रहे हैं, क्या है। तो नींद एक तरह से शरीर छूटने का नाम है। राम जी ने कितनी गहरी दृष्टि दी है कि अगर मनोरम कोई स्थान है शरीर में, सिर्फ निद्रा है। है। जी, जी। शायद हमारे श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि ब्रह्म मनोरम है, मन मन कहते हैं ना, अमन हो जाता है। मन होता ही नहीं वहाँ।
1: अच्छा, शरीर में जो मन है वो किस रूप में स्थित है?
0: आपने जो सुंदर कहा, इसको राम जी कहते हैं कि जिस तरीके से चूहा चारों तरफ से बिल बना के बैठा रहता है, कहीं से भी घुस सकता है, राम जी कहते हैं ये मन ऐसे ही शरीर में रमा हुआ है।

0: की भांति हर तरफ से बिल खोद रखा है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: जब भी इस शरीर का उपयोग करेंगे वो मन के द्वारा ही उपयोग किया जाएगा इसका
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे में ये शरीर मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर से मन ही जिया जाता है। आप देखें तो सुख दुख जो है वो मन की ही चाह और नहीं चाहने की बात है कि आपके मन के अनुरूप हो गया तो आप सुखी हो गए, मन के प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो गए, जबकि सुख दुख विषय और विषयों के योग में नहीं है, मन की चाह और मन की अचाह में है जी। तो कहते हैं इसलिए मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि सब ओर से उस मन का ही तो व्यवहार होता है, इससे मन से ही तो तृष्णा आती है।
1: अच्छा, तो फिर शरीर का धर्म क्या है?
0: शरीर का धर्म क्या है, ये आपने सुंदर सवाल किया। राम जी कहते हैं शरीर का एक ही धर्म है, विनाश।
1: अच्छा,
0: हाँ। अब आप देखिए कितना क्रांतिकारी उद्घोष है, और शरीर से ही हम धर्म करना चाहते हैं, है ना। सारा धर्म, जिस शरीर का धर्म विनाश हो
1: जी,
0: उस
1: जी।
0: शरीर से अगर धर्म करने की बात की जाए तो तृष्णा ही तो होगी।
1: हाँ।
0: जो हमने पिछली बार मतलब तृष्णा की निंदा में राम जी ने कहा
1: जी,
0: भी है
1: जी।
0: कि आप जो स्वर्ग नर्क की बात करते हैं या उसके लिए शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वो देखें तो वो सब विनष्ट हो जाते हैं। और इसी ग्रंथ में बात आता है एरिस्टोनेमी का, जब वो कहते हैं कि स्वर्ग में क्या है, तो कहते हैं जिनका उत्तम भोग है उनको उत्तम भोग मिला हुआ है, और जब उनका वो फल कर्म जो समाप्त होगा तो फिर वो ढकेल दिए जाएंगे वहां से। तो कहा स्वर्ग की मुझे कामना नहीं
1: है। हाँ, हाँ।
0: और इस स्वर्ग से आदमी क्या करता है, शरीर से भाई मरने के बाद व्यक्ति स्वर्गीय हो जाता है। हम लोग बोलते भी उपमा देते ना कि स्वर्गीय श्री, इस शरीर से अधिक यात्रा स्वर्ग की हो सकती है, है ना। तो वो भी मृत्यु के बाद होती है, तो कहते हैं कि वो भी विनाश नाशवान है, स्वर्ग भी नाशवान है। तो शरीर का जो धर्म है वो विनाश है, इसलिए इस शरीर के धर्म में न पड़ करके इस शरीर रूपी यंत्र का उपयोग अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में किया जाए और जीवन मुक्त की भांति व्यवहार किया जाए। व्यवहार आबद्ध होकर के पक्षियों की तरह, जो कहा ना ईश्वर और जीव रूपी पक्षी बन करके न जिया जाए, क्योंकि यहाँ ईश्वर भी आता है तो दुख भोगता है। आप देखिएगा जितने भी हमारे अवतार हैं, क्या वो दुख नहीं भोगे हैं?
1: बिल्कुल।
0: जब हम कहते हैं, विचार करके देखिए कि जब राम और कृष्ण ने शरीर धारण किया तो उन्हें

0: का साथ छोड़ देता है जिस जीव ने इसके समस्त भोगों के भोगने में सहयोग किया है, क्योंकि उसी की चेतना से हम कहते हैं कुछ भी आप अच्छा बुरा जो भी आपके जीवन में हुआ है वो चेतना जो जीव है जो अविद्यावश अपने को शरीर मान बैठा है तो उसकी वजह से है। लेकिन जब जिस दिन वो मरता है शरीर, उस दिन शरीर यहीं रह जाता है, पांच तत्वों में मिल जाता है और जीव अकेला जाता है यहां से। तो कहते हैं कि ये आस्था करने योग्य नहीं है, विवेकवान है वो जानते हैं कि अंत में जीव अकेला ही जाएगा।
1: जी जी, जी। बहुत ही संक्षेप में दो बातें आप बता दें कि जो शरीर है उसको लेकर किसी तरह की विशेषता का अनुभव किया जा सकता है क्या, और दूसरा कि उत्तम पुरुष का चित्त कैसा होता है।
0: मैं तो ये मानता हूं कि शरीर को लेकर के विशेषता का अनुभव बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी को अपने रूपवान होने का अहंकार है तो बूढ़ा होगा, वो रूप ढल जाएगा। कोई बहुत ताकतवर है, ताकत भी रहने वाली नहीं है। तो ये एक प्रकार की अज्ञानता है कि हम लोग शरीर को लेकर अपने विशेषता का अनुभव करते हैं। विशेषता तो बिल्कुल नहीं, राम जी कहते हैं कि शरीर को लेकर विशेषता का अनुभव नहीं किया जा सकता,
1: नहीं किया जा सकता।
0: और जो आपने कहा उत्तम पुरुष का चित्त कैसा होता है, तो राम जी कहते हैं कि उत्तम पुरुष का चित्त इस प्रकार होता है कि वो अपने शरीर के किसी भी प्रभाव में नहीं होता और वो पूरी तरह से अपने आप को मुक्त रखता है। और कहते हैं कि हे मुने उत्तम पुरुष, मैं न तो इस शरीर का कोई संबंधी हूं और न शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है और न मैं ही यह शरीर हूं, ऐसा भाव रखते हैं हमेशा।
1: तो ऐसे भाव के साथ वो जीते हैं और हमें भी
0: ऐसे भाव के साथ आप रह के देखिए, अब भी आपके सारे जितने भी व्यवहार हैं व्यवहार में अचानक परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब आप शरीर मान करके जीते हैं तभी आपसे अनुत्तम कर्म होते हैं। जब आप मानते हैं मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर आपसे उत्तम कर्म होगा और आप उस जीव की भी स्थिति से, जीव की अज्ञानता से मुक्त होकर अपने ब्राह्मी स्थिति में होंगे और ब्राह्मी स्थिति में होकर के ही जीवन मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा जीवन मुक्त होकर के जीना
1: संभव नहीं,
0: संभव नहीं है।
1: जी। तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने बातचीत सुनी श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम केंद्रित है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात अब्बास तैयब जी के विषय में। श्रोताओं, दांडी यात्रा शुरू होने से केवल एक दो दिन पहले की बात थी। बड़ौदा स्टेट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस अब्बास तैयब जी अपनी बेटियों को साथ लेकर के गांधी जी के आश्रम में दाखिल हुए। गांधी जी अपने इस पुराने मित्र को देख करके खुशी से खिल उठे।
2: उन्होंने उठकर अपने मित्र का स्वागत किया, गले मिले। गांधी जी को लगा दांडी यात्रा के समय उन्हें विदा करने आए हैं। तैयब जी की उम्र उस समय 76 वर्ष की थी। इस वृद्धावस्था में जर्जर देह को लेकर उनका वहां आना गांधी जी को भावुक कर गया।
1: लेकिन श्रोताओं, साथ में उन्होंने इस मित्र को एक अपनत्व भरी डांट भी पिला दी। और इस उम्र में दांडी यात्रा करने का विचार कि उनके मन में आया कैसे? तैयब जी भौचक्के रह गए। भौचक्के इसलिए कि एक तो गांधी जी ने खुद ही उनका नाम दांडी यात्रा करने वाले 69 लोगों की सूची में शामिल किया और ऊपर से डांट भी पिला रहे हैं। नामों की यह सूची अखबार में छपी थी। तैयब जी ने वही इसे देखा और अपना नाम स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में देख करके भावुक उठे और अपने उम्र की परवाह न करके चल पड़े गांधी जी से मिलने के लिए।
2: हालांकि वे काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन गांधी जी द्वारा उन्हें दांडी यात्रा का एक सिपाही बनाना उन्हें छू गया। उन्हें लगा वह एकदम से बेकार नहीं हुए हैं और आजादी के यज्ञ में अपना योगदान दे सकते हैं।
1: हाँ श्रोताओं, गांधी जी ने उनका नाम बिना उनकी सलाह के ही शामिल किया था। यह एक और पॉइंट था जो तैयब जी को भावुक कर गया था। भावुक इसलिए कि गांधी जी का उन पर कितना भरोसा था। वे यह मान करके चल रहे थे कि तैयब जी इस बारे में ना नहीं करेंगे,
2: लेकिन यहाँ गांधी जी थे कि इतने भरोसे से उनका नाम शामिल करने के बाद भी उन्हें डांट रहे थे। इस उम्र में यात्रा में कूदने का मतलब तैयब जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे।
1: श्रोताओं, उन्होंने अखबार खोल करके उसमें दांडी यात्रा की सूची में अब्बास तैयब जी का नाम गांधी जी को दिखाया। उनका मुंह देखने लगे। अब तक सारा माजरा गांधी जी की समझ में आ चुका था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, जरा अब्बास को तो बुलाना।
2: अब्बास? तैयब जी को बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। तब तक आश्रम में रहने वाला 20-22 साल का वे युवक आ भी गया जिसका नाम दांडी यात्रियों की सूची में शामिल था और जिसके कारण जस्टिस अब्बास तैयब जी को भ्रम हुआ।
1: श्रोताओं, लेकिन गांधी जी अब तक देश के प्रति यह जज्बा रखने वाले तैयब जी को इस आंदोलन में कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका देने का मन बना चुके थे। उन्होंने अब्बास तैयब जी को इस आंदोलन का प्रधान सेनापति बना दिया, तत्काल नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी के बाद के लिए।
2: दांडी यात्रा के दौरान अब्बास तैयब जी हर पड़ाव पर गांधी जी से रेल या मोटर के जरिए मिलने जाते थे। जब गांधी जी ने धड़साना की चढ़ाई घोषित की तब अब्बास तैयब जी वहां पहुंचकर तुरंत सेनापतित्व ग्रहण कर लिया।
1: श्रोताओं, अब्बास तैयब जी का जन्म गुजरात के खंबात में बहुत ही अमीर और शिक्षित घराने में हुआ था। उनके पिता शमसुद्दीन तैयब जी बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ महाराज की सेवा में थे, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे बद्रुद्दीन तैयब जी उनके पिता के बड़े भाई थे।
2: अब्बास तैयब जी ने 11 सालों तक इंग्लैंड में पढ़ाई की और वहां से वे भूरे साहेब बनकर वापस आए।
1: ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी के संस्कारों से संपन्न, पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली के जबरदस्त समर्थक बन करके वे वापस लौटे थे। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे तैयब जी को बड़ौदा रियासत में जज की कुर्सी हाथों हाथ मिल गई। अपने पूरे करियर के दौरान वे ब्रिटिश राज के जबरदस्त समर्थक बने रहे। अपने बच्चों को उन्होंने पाश्चात्य ढंग में ढाला और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। अब्बास तैयब जी का जज का करियर अच्छा चला और रिटायरमेंट के पहले वे बड़ौदा स्टेट के चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिंदगी की असली भूमिका तो अभी बाकी है और इसके लिए कुदरत एक ताना बाना बुन रही है।
2: खैर, वह बात थोड़ी देर से। पाश्चात्य उदारवाद से प्रभावित तैयब जी महिलाओं के समर्थक थे और उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। पर्दा प्रथा के विरोधी थे और अपनी बेटियों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाई।
1: श्रोताओ, अब्दुल्ला यूसुफ अली ने अपनी किताब लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया में तैयब जी के खानदान की औरतों का बहुत अच्छा विवरण लिखा है। वे लिखते हैं कि उनमें से एक ने लंदन के कॉन्वेंट गार्डन में फैंसी बॉल ड्रेस के अंदर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। उसमें से कोई लेखन में तो कोई ब्रश में माहिर थी, कोई म्यूजिक में माहिर थी। इस खानदान की महिलाएं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी। केवल पियानो भरी ही नहीं, वीणा पर भी उनकी उंगलियां मचलती थी। संवाद, कलात्मक दक्षता, सामाजिक योगदान में वे यूरोप व अमेरिका में सबसे उन्नत घरानों का मुकाबला करती थी। खैर, वो बात अलग है। मूल विषय पर लौटते हैं, अब्बास तैयब जी के बारे में। 1917 में जब गोधरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ तो गांधी जी के साथ तैयब जी ने भी इसमें हिस्सा लिया। हालांकि उस समय भी वे इंग्लिश सूट पहनने वाले पश्चिमी बाबू साहब ही थे।
2: लेकिन ये सब अकस्मात बदल गया जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।

0: सर करने के लिए मीलों पैदल चलते।
1: हाँ श्रोताओं, कितना बदल गए थे वो। कई साल वे जेल में भी बंद रहे। 1928 के बारदोली सत्याग्रह के समय उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किया। इस दौरान अंग्रेजी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार किया उन्होंने। श्रोताओं, उनकी बेटी सुहेला याद करते हुए कहती हैं कि किस तरह हमने बैलगाड़ी भर के पश्चिमी कपड़े, जिनमें उनकी माँ की सबसे अच्छे आयरिश लिनन के कपड़े, पिता के पश्चिमी सूट और खुद सुहेला की रेशमी मलमली वस्त्र थे, सब आग के हवाले कर दिए थे। श्रोताओं, इस तरह 1919 से 1930 के दौरान लगातार अब्बास तैयब जी राजवादी से राष्ट्रवादी के रूप में तब्दील होते चले गए। यह एक वैचारिक यूटर्न था जिसकी झलक उनकी संपूर्ण जीवन शैली में दिखाई दे रही थी।
0: इसी का नतीजा था कि 1930 की दांडी यात्रा के समय हमने थरथराती वृद्धावस्था के बावजूद इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए उतावले उस तैयब जी का दीदार किया, जिसने गांधी जी को भी अभिभूत कर दिया।
1: हाँ श्रोता, अभिभूत की तो बात ही थी। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने जा रहा था, नमक सत्याग्रह उसी की पहली कड़ी थी। गांधी जी को पता था कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित है और तैयब जी को उन्होंने अपने बाद इस आंदोलन का मुखिया बना दिया था। 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। नमक सत्याग्रह के अगले चरण की कमान तैयब जी के हाथ में आ गई। साथ

उनके कॉटेज में वे रहने लगे। यहीं पर 9-10 जून 1936 की दरमियानी रात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में GOM ऑफ गुजरात शीर्षक से एक लेख लिखा था। GOM का मतलब होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के वायुव्रत पुरुष। श्रोताओं, हम आपको बता दें, द ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और गांधी जी ने हरिजन में तैयब जी के बारे में लिखा है कि इस उम्र में उस इंसान के लिए जेल की तकलीफें उठाना मजाक नहीं था, जिसने जिंदगी की कठिनाइयां कभी जानी ही नहीं, लेकिन उनकी अवस्था ने सभी मुश्किलों का सामना किया। वे भारत माता के सच्चे सेवक थे, वे मानवता के सेवक थे। वे मानते थे कि ईश्वर गरीब की झोपड़ी में और वंचितों के बीच में ही मिलता।

रेडियो रिपोर्ट में आज पहले हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां 7 जून यानी रविवार को भाव अनुभाव नृत्य समारोह का समापन हुआ।